0: का रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: दोस्तों, अगला संदेश हमें भेजा है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान ने। सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका ने। मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निसा, सबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी ने। दरियापुर भाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले ने। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिक और बलवीर सिंह ने। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी ने। बहलोल नगर से नितेंद्र झोरड़, भीमसेन झोरड़, लोकेश झोरड़, गौरव झोरड़, पुनीता झोरड़ और बेबी आरवी झोरड़ ने। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान और शहनाज ने। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल और सुरेंद्र भादू ने। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म ब्लैकमेल से किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: आपकी चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी?
2: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
1: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
0: ना भाई ना।
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
6: दोस्तों, अगली फरमाइश हमें भेजी है गांव अमरपुरा जालूखाट से जगदीश चंद्र प्रजापति, विमला प्रजापति, मोनू प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति और हरीश चंद्र पूनिया ने। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने। गांव बनवाला हनवंता फाजिलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका और विद्या देवी ने। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमीला ढुकिया, ज्योति, अमना, साइना, शिवम ढुकिया और इवा धारणिया ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार ने। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हजारीलाल पुरोहित, मोनी पारिक, भूपेंद्र पारिक, जगत मंडावरा और राजू मंडावरा ने। गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी ने। निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने। मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, विकास गोयल और नीतू गोयल ने। आइए अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म याद रखेगी दुनिया से, मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज़ों में।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में?
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
7: श्रोताओं, अगला संदेश हमें भेजा है श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जोनी बंसीवाल और धनराज बंसीवाल ने। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साईं गायकवाड़ ने। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता ने। अलीका तहसील डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी, सोनू और रजनी ने। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अबासी, शहनाज अबासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ अबासी और रसीद वारसी ने। उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुनत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मुनत ने। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान और सभीहा अंजुमन खान ने। रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा ने। बागपत से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सारिक अली खान ने। खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी और फाल्गुनी जोशी ने। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म स्टंट मैन से कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में।

दोस्तों, अगली फरमाइश हमें भेजी है चक 15 PS जिला श्री गंगानगर से सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, आदर्श पाल जोशन और रोबिन सिंह जोशन ने। किशनगंज बिहार से रविंदर मोहनदास और आशा देवी ने। गांव ढाणीलाल खा नोहर से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो और विनोद खां ने। दतरंगी भाटापार छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने। बठिंडा से इंजीनियर अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमाजीत ग्रोवर ने। साबुआना फाजिलका से करण कंबोज, चरण कंबोज, रियांश मानव और परीश कंबोज ने। तहसील भादरा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, मोनू, अशोक कुमार, उपेश कुमार, पवन कुमार, साहिल, सोनू, राघव, मुरारीलाल शर्मा, मदनलाल शर्मा, महावीर लोहरा, विद्याधर सारस्वत ने। गांव कोहला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार, सुनील, मोहन, भजनलाल।

कैलाश और लक्षिता सुथार ने। गांव 4 एएम से कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत और जसदीप ने। गांव खारिया, जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया ने। पटेल नगर, मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू ने। लीजिए अब सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म साजन चले ससुराल से।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
5: दोस्तों, अगला संदेश हमें भेजा है जिला जालना महाराष्ट्र से विजय पाटिल सो, पद्माबाई पाटिल, चिरंजीव ज्ञानेश्वर पाटिल और कुमारी तेजस्विनी पाटिल ने। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। नोहर हनुमानगढ़ से पवन सुथार, अमरजीत सुथार, मोहन सुथार, सुनील सुथार और विष्णु सुथार ने। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, निप्पी साहनी और श्रीमती सुनीता साहनी ने। केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशी राम महेंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा और थानेदार भालू राम जी। पटियाली रोड गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से मोहम्मद खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, आकिल कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा ने। गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा ने। गांव होडू जिला बालोतरा से उमेदा राम, सुरेश कुमार और सुरतेश गोदारा ने। 58 NP रायसिया नगर से सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी, हरबंश लाल, बनवारी लाल, गोपी राम, ललित कुमार, नरेंद्र कुमार और मीनाक्षी मलखट ने। हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, आम्रपाली गायकवाड़, आविष्कार, अनामिका और परनीता गायकवाड़ ने। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत फिल्म हनीमून से, अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाजों में।

दोस्तों, अगली फरमाइश हमें भेजी है तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख ने। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर और विशाल नाहवकर ने। सरदारपुरा से अनिल जाट और रेखा जाट ने। बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। बाड़मेर से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा ने। हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना और कुश खन्ना ने। अहमदपुर खेरगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली ने। जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी ने। सादुल शहर से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने। फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, पवन गोड़ और योगेंद्र नायक ने। खंडवा से राजेश सेन और सुरेखा सेन ने। गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा ने। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजूला राठौड़, विशाल और निशा ने। आइए अब सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म साजन का घर से।

दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम के आखिर में आइए अब सुनते हैं फिल्म घर का ये गीत हमारे सभी श्रोताओं के लिए।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल सूरत से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, DRM 909 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 6.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर। शाम के 6 बजे हैं। अब सुने कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में पहले सुने जानकारी हमारे सभा के शेष प्रसारणों के संबंध में शाम 6:05 पर कार्यक्रम होगा सराय की। ग्रामीण परिवार सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम चौपाल। आज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मुकेश चावरिया के साथ शाम 7 बजे। फिल्म संगीत एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे। नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोप ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे का समय रहेगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा के लिए। ये थे हमारे सभा के शेष प्रसारण और इनका प्रसारण समय।

कार्यक्रम विवरण में सुने जानकारी हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी सवेरे 5:50 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे सवेरे 6:10 पर। चिंतन का समय रहेगा 6:45 का। सवेरे 7:10 पर कार्यक्रम खेतियाना वास्ते में किसान भाई सुनेंगे जानकारी कृषि में नीम का महत्व। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस पर आधारित गान पाठ होगा मानस गान प्रातः 7:20 पर। कल आप सुनेंगे इसका 344वां भाग। सुप्रभात कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 7:30 पर। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम होगा मरुमंगल। कलाकार होंगे भगत धर्मपाल भारती। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 9:10 पर। 9:30 पर कुछ फिल्मी नगमे आप सुनेंगे। 9:30 पर फिल्मी नगमे सुनेंगे युगल गान जिसमें आप सुना करते हैं। और फरमाइशी फिल्मी संगीत का कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। उससे पहले आज के फनकार कार्यक्रम 10 बजे आप सुनेंगे। 12:05 पर कुछ और फिल्म में कार्यक्रम सैनिकों के लिए के अंतर्गत आप सुन सकते हैं। सुगम संगीत का समय रहेगा दिन में 12:30 का। मृदा में जैविक कार्बन का महत्व कार्यक्रम खेत खलिहान में ये जानकारी आप सुनेंगे दिन में 12:50 पर। मधुलता पुरोहित के साथ बहने सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत दिन में 1:05 पर। कुछ फिल्म नगमे आप सुनेंगे। युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी शाम 5 बजे जिसमें भेंट वार्ता आपको सुनवाई जाएगी स्क्रीन बनाम स्कूल बदलती तकनीक के साथ पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता। वार्ताकार होंगे प्रवीण भाटिया और इनसे बातचीत करेंगे नवीन सिसोदिया।

शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सराइकी, चौपाल शाम 7 बजे सुनील शर्मा के साथ। फिल्म संगीत में एक ही फिल्म से कार्यक्रम रात 8 बजे आप सुनेंगे। 9:15 पर होगा सुगम संगीत का आयोजन। खेल जगत आप सुनेंगे रात 10 बजे, जिसे हम अपने जयपुर के से रिले करेंगे। और रात 10:30 पर कुछ फिल्म नक में। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। अब सुने सराय की।

मेरा ख्याल है गीत तुहाकू पसंद आया हो सी। कलाकार हन A.S. कंग, सराय की भैरों भरा वो। जिंदगी विच कई रिश्ते इहो जहे होंदे हिन जिन्हां दा कोई ना ही नहीं। पंजाबी दा एक ड्रामा है, रिश्तियां दा की रखिए ना। असल विच जडन किसी नाल प्यार थींदा है ना, ता समझ ही कोनी आंदा कि ये रिश्ते की वणवंजन। छुहेर सचेंदी है कि उस दा प्यार बस उस नाल ठीक गया, प्यार कीता नहीं वेंदा, वो उसको बहु प्यार करेंदी है। पर ये समझ को नहीं आंदा कि उसको के कह के बुलावे। इसको देते हुए मेकू एक बहु प्यारा गीत चेते आंदा पिया है कि कह के बुलावा तैनू के तू मेरा की लगना है। गावन विच बहु कलाकारी नाल पेश कीता है सरवजीत ने। चस घिनो इस गीत दी।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने भारत में विश्वास जताया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रमुख कंपनियों के सीईओ से चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों को जन सहभागिता के साथ काम करने के निर्देश। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज हुआ। और श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर कल शिवालयों में भोलेनाथ के अभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में उल्लास। पवित्र सरोवरों से कांवड़ लाने का सिलसिला जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री ने निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील करते हुए कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखे।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: गौरतलब है कि 2023 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। बीती 18 जुलाई को देश की एक निजी कंपनी ने भी पहला विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर भारत की अंतरिक्ष शक्ति को और ऊंचाइयां प्रदान की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। वहीं अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावी कार्य योजना बनाकर जन सहभागिता के साथ काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर जयपुर में समीक्षा बैठक की। श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में 12 वफात, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे बड़े त्योहार और पर्व आ रहे हैं। ऐसे में आमजन के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए जिससे छोटी बड़ी जानकारी समय पर मिल सके और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत सहित उच्चाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार राजस्थान और जापान के बीच रत्न आभूषण सहित अन्य उद्योगों के विकास के लिए रोड मैप बनाकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेष सुविधाएं विकसित कर जापानी कंपनियों को अनुकूल माहौल उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज जयपुर में जापान के प्रतिनिधिमंडल के साथ उद्योग और निवेश को लेकर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान और

0: मेजबान के बीच वर्षों पुराना नाता है। श्री शर्मा ने कहा कि जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन और यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएशन मिलकर तकनीक और निवेश के साथ रत्न आभूषण व्यापार को और आगे लेकर जाएं। इससे व्यापार बढ़ने के साथ ही रोजगार के भी ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि जापान की 180 कंपनियां राजस्थान में काम कर रही है। बैठक में जापान की कोफू सिटी मेयर युईची हिगुची ने राजस्थान सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों और यहां उपलब्ध निवेश अवसरों की सराहना की। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमा जरूरी है। श्री मेघवाल ने कहा कि बीमा और मुआवजे से जुड़ी योजनाओं को एकीकृत करने और सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए अधिक समन्वित ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने घोषणा की कि 1857 के विद्रोह से जुड़े वाल्मीकि समुदाय के नायक गंगू बाबा की प्रेरणा को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्मारक विकसित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ने लगी है। भाजपा और कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज कर दिया है। 309 स्थानीय निकायों में दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा, वहीं 11 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। प्रत्याशी 27 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में महज 3 दिन का समय शेष रहते प्रमुख पार्टियों का टिकट लेने के लिए प्रत्याशी जोर शोर से दमखम दिखा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि इन चुनावों में 1,44,00,000 से अधिक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जयपुर नगर निगम में सबसे अधिक मतदाता है, वहीं बूंदी के इंद्रगढ़ में सबसे कम वोटर हैं। कल श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। इस मौके पर प्रदेश भर में शिवालयों और मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उल्लास देखा जा रहा है। तड़के से ही शुरू होने वाला बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे कल अपने पूरे परवान पर रहेंगे। पवित्र सरोवरों से जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए कांवड़ यात्राएं भी जोर शोर के साथ चल रही है। झुंझुनू जिले के लोहारगल स्थित प्राचीन कुंड से जल शेखावटी क्षेत्र के साथ साथ दूर दराज के मंदिरों तक पहुंचाने के लिए कांवड़िए पहुंच रहे हैं। जयपुर के गलता सरोवर, बीकानेर के श्रीकोलायत और पुष्कर सरोवर और बेणेश्वर त्रिवेणी संगम के जल को भगवान को अर्पित करने को लेकर लोगों में उत्साह बनाया हुआ है। नागौर में आज निकाली गई कांवड़ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शक्कर तालाब से शुरू हुई यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। आमजन ने सरोवर का पूजन कर जल संरक्षण की शपथ ली।
1: सरोवर पूजा के बाद सुबह शुरू हुई यात्रा में श्रद्धालु कांवड़ लेकर शामिल हुए। यात्रा विजय वल्लभ चौक, दिल्ली गेट, ए रोड और गंध चौक होते हुए शिवबाड़ी मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए और शहरवासियों ने पुष्प और शक्कर कांवड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान जीवंत झांकियों ने आकर्षण बढ़ाया। मंदिर पहुंचने पर संत महात्माओं के प्रवचन, भस्म आरती और धार्मिक कार्यक्रम हुए। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज मेवाड़ के एकलिंगजी महादेव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इससे पहले उदयपुर दौरे में राज्यपाल ने मथाथा स्थित मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर पैनोरमा का अवलोकन किया। राज्यपाल ने बप्पा रावल को भारतीय इतिहास का महान योद्धा बताते हुए सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव में आज बेटियों ने पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान लोगों ने पौधों की आरती उतारी और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया।

0: कार्यक्रम में क्षेत्र में हाल ही में जन्मी बेटियों की माताओं ने कन्याओं के नाम पौधे भी लगाए। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पाली में शिक्षा विभाग और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से ब्लू प्लेनेट प्रश्नोत्तरी और कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जिले भर के विद्यार्थियों ने पर्यावरण, पृथ्वी और जल संरक्षण जैसे विषयों पर अपनी भावनाओं को कला के जरिए व्यक्त किया। विजेताओं को जिला प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापत्तनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 28 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने भारत में विश्वास जताया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रमुख कंपनियों के CEO से चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को जनसहभागिता के साथ काम करने के निर्देश दिए। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा और कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज हुआ। और श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर कल शिवालयों में भोलेनाथ के अभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में उल्लास। पवित्र सरोवरों से कांवड़ लाने का सिलसिला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले की चिट्ठी की शुरुआत नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। राज्य निर्वाचन आयोग और नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही प्रतापगढ़ जिले के नगर परिषद और सभी नगर पालिका क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कुछ श्रेणी के लाइसेंस धारी शस्त्रधारियों से हथियार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जमा कराने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित हथियार निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने होंगे। आदेश का उल्लंघन होने पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव का काम पूरा होने के बाद हथियार वापस किए जाएंगे। चुनाव को लेकर जिले के नगरीय क्षेत्रों में निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है। 19 अगस्त से 22 सितंबर की मध्य रात्रि तक लागू निषेधाज्ञा के तहत बिना अनुमति हथियार लेकर चलने और उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। बिना पूर्व अनुमति के सभा, धरना, रैली, जुलूस और प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। चुनाव प्रचार में पोस्टर, बैनर, झंडे, होर्डिंग, लाउडस्पीकर और वाहनों के उपयोग के लिए भी निर्धारित अनुमति जरूरी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी और डीजे पर पूरा प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने आमजन से शांतिपूर्ण चुनाव में सहयोग देने की अपील की है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर शुभम चौधरी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता और राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी दलों से नियमों का पालन करने और चुनावी गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुमतियां लेने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय समारोह गरिमा और उल्लास के साथ आयोजित हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हॉकी मैदान में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब समाज के हर व्यक्ति को सम्मान, अधिकार और आगे बढ़ने के अवसर मिले। समारोह में परेड, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण भी हुआ। इसी कड़ी में राजकीय कन्या

महाविद्यालय में एक शाम स्वतंत्रता और लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं को मतदाता जागरूकता, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और मतदान के महत्व की जानकारी दी गई। स्वीप एम्बेसडरों ने छात्राओं को जागरूक किया। पिछले दिनों हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अभियान के तहत नगर परिषद परिसर में जिला स्तरीय तिरंगा प्रदर्शनी लगाई गई। जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहां तिरंगे के इतिहास, स्वरूप और राष्ट्रीय महत्व की जानकारी दी गई। अधिकारियों और आमजन ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। धमोतर पंचायत समिति में तिरंगा मेले के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए, जिससे देशभक्ति के साथ ग्रामीण महिलाओं की आजीविका और आत्मनिर्भरता का संदेश भी सामने आया। प्रतापगढ़ के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक जिला एक उत्पाद थेवा विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। युवाओं को ODOP, MSME, एक्सपोर्ट पॉलिसी तथा विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और अन्य स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के विद्यालयों और नर्सिंग महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक और मानसिक और आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। विद्यालयों में शिकायत पेटी लगाने की पहल भी की जा रही है। सावन के महीने में जिले भर में जगह जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और सोमवार के दिन शिवालयों में जलाभिषेक और सहस्त्र घट के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। श्रावण के पहले सोमवार को प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से रुद्राभिषेक किया गया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने भगवान शिव का अभिषेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और जनकल्याण की कामना की। इसी के साथ प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: पहले आज री खास खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो अंतरिक्ष खेतर रा स्टार्टअप्स भारत माए विश्वास जतायो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस माथे प्रमुख कंपनियां रा सीईओ सू चर्चा करी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आवता त्योहारा ने देखता थका प्रदेश माए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था ने लेट समीक्षा बैठक ली अहलकारा ने जन सहभागिता रे साथे काम करने रा हुकुम दिया प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव ने लेर सरगर्मियां बढ़ी भाजपा और कांग्रेस समेत राजनीतिक दला माए उम्मीदवार ने लेर मंथन तेज व्यो और श्रावण महीना रा अंतिम सोमवार माथे काले शिवालया माए भोलेनाथ रा अभिषेक ने लेर श्रद्धालुआ माए उछास पवित्र सरोवर सू कावड़ लाने रो सिलसिलो जारी है। समाचार रे साथे मैं संगीता शर्मा और अब ए समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो है कि अंतरिक्ष खेतर रा स्टार्टअप्स सरकार माए आपरो विश्वास जतायो है। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस रे मौके माथे प्रधानमंत्री अंतरिक्ष खेतर रे स्टार्टअप्स रे मुख्य कार्यकारी अहलकारा रे साथे चर्चा करी। प्रधानमंत्री रोजाना जतन करे और अंतरिक्ष खेतर रा एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने री अरज करता हुआ कयो कि एड़ो अनुकूल माहौल बनायो जानो चाहिए जाए जिनसू दुनिया भर रा लोग अंतरिक्ष खेतर माए आपरो करियर तलाशने खातिर भारत ने पसंदीदा गंतव्य
1: दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है हिंदुस्तान जाओ भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ मैं पक्का मानता हूँ जी पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: ध्यानजोग है कि 2023 माए आज ही रे दिन भारतीय अंतरिक्षयान चंद्रयान 3 रे चंद्रमा रे दक्षिणी ध्रुव माथे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग री याद माए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनायो जावे है। आ उपलब्धि हासिल करने

वालों भारत दुनिया रो पहलो देश हो। बीती 18 जुलाई ने देश री एक निजी कंपनी भी पहलो विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर रही अंतरिक्ष शक्ति ने और ऊंचाइयां माथे पहुंचायो। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस माथे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह देशवासियों ने शुभकामनावां दी। श्री राधाकृष्णन सोशल मीडिया पोस्ट माए कहो कि अंतरिक्ष अन्वेषण माए भारत री उल्लेखनीय उपलब्धियां देश री वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार री भावना ने आगे बढ़ाने रे पक्के संकल्प रो प्रमाण है। प्रधानमंत्री आपरे संदेश माए कहो कि नूवी वैश्विक व्यवस्था माए भारत लगातार आपरे अंतरिक्ष क्षेत्र रो विस्तार कर रियो है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहो कि चंद्रयान 3 री ऐतिहासिक उपलब्धि रे साथ ही भारत अंतरिक्ष रा क्षेत्र माए अग्रणीय देशा माए भेड़ो वैग्यो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आवता त्योहारा ने देखता थका अहलकारा ने प्रभावी कार्य योजना बनार जन सहभागिता रे साथे काम करने रो कहो है। मुख्यमंत्री प्रदेश माए कानून सुरक्षा और यातायात व्यवस्था ने लेर जयपुर माए समीक्षा बैठक करी। श्री शर्मा कहो कि आवण वाला दिना माए 12 वफात, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जड़ा मोटा त्यौहार और पर्व आ रिया है। एड़ा माए आम जन रे साथे आपसी समझ पक्की करी जावे जिनसु छोटी बड़ी जानकारी बकत माथे मिल सके और जरूरी कार्रवाई पक्की करी जा सके। बैठक माए पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, गृह महकमारा अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत समेत उच्चाधिकारी मौजूद रिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि राज्य सरकार राजस्थान और जापान रे बीच रत्न आभूषण समेत दूजा उद्योगों रे विकास खातिर रोड मैप बनार काम कर रही है। वणा कहो कि खास सुविधावां विकसित कर जापानी कंपनियां ने अनुकूल माहौल मुहैया करवायो जा रियो है। आज जयपुर माए जापान रे प्रतिनिधिमंडल साथे उद्योग और निवेश ने लेर आयोजित बैठक माए मुख्यमंत्री कहो कि राजस्थान और जापान बीचे बरसों पुराणो नातो है। श्री शर्मा कहो कि जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन और यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएशन मिलर तकनीक और निवेश रे साथे रत्न आभूषण व्यापार ने और आगे लेर जावेला। इनसु व्यापार बधने रे साथे ही रोजगार रा भी बत्ती उबत्ती मौका बनेला। मुख्यमंत्री बतायो कि जापान री 180 कंपनियां राजस्थान माए काम कर रही है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो कि सफाई रे काम माए मानवीय श्रम ने कम करने और मशीना रे बत्ती इस्तेमाल री जरूरत है। आज नवी दिल्ली माए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग रे स्थापना दिवस जलसा माए वणा कहो कि सफाई कर्मियां रे खातिर सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमो जरूरी है। श्री मेघवाल कहो कि बीमा और मुआवजे सु जुड़ी योजनावां ने एकीकृत करने और सफाई कर्मचारियों रे कल्याण खातिर समन्वित ढांचो तैयार करने री जरूरत है। बड़ा घोषणा करी कि 1857 रे विद्रोह सु जुड़िया वाल्मीकि समुदाय रा नायक गंगू बाबा री प्रेरणा ने जन जन ताई पहुंचाने रे लखस सु एक राष्ट्रीय स्मारक विकसित करियो जावेला। ए खबर आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु सुन रिया हो। प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव ने लेर सरगर्मियां बढ़न लागी है। भाजपा और कांग्रेस समेत प्रमुख राजनीतिक दलों ने उम्मीदवार ने लेर मंथन तेज कर दियो है। 309 स्थानीय निकायां माए दो चरणा माए वोट डालिया जावेला। पहले चरण रो मतदान 9 सितंबर ने हुवेला, वठीने 11 सितंबर ने दूजे चरण री वोटिंग वेला। प्रत्याशी 27 अगस्त सु 31 अगस्त ताई नामांकन पानो दाखिल कर सकेला। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने माए महज 3 दिन रो बखत बाकी रहो है। प्रमुख पार्टियां रा टिकट लेने खातिर प्रत्याशी जोर शोर सु दमखम दिखा रिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह बतायो कि आ चुनाव माए 1,44,00,000 सु बत्ती वोटर आपरे मताधिकार रो प्रयोग कर सकेला। जयपुर नगर निगम माए सबसु बत्ती मतदाता है, वठीने बूंदी रे इंद्रगढ़ माए सबसु कम वोटर है। काले श्रावण मास रो अंतिम सोमवार है। इन मौके माथे प्रदेश भर माए शिवालयां और मंदिरां माए भगवान भोलेनाथ रे अभिषेक ने लेर श्रद्धालुओं माए खासो उचास देखियो जा रियो है। तड़के सु ही बम बम भोले और हर हर महादेव रा जयकारा काले आप रे पूरे परवान माथे रवेला। पवित्र सरोवरां सु पानी लार भगवान शिव ने चढ़ायो जावण खातिर कावड़ यात्रा माँ भी जोर शोर रे साथे चाल रही है। झुंझुनू जिला रा लोहारगढ़ स्थापित प्राचीन कुंड सु पानी सेखावाटी खेतर रे साथे साथे दूर दराज सु मंदिरां ताई पहुंचावण खातिर कावड़िया पूग्य रे। जयपुर रा गलता सरोवर, बीकानेर रे श्री कोलायत और पुष्कर सरोवर और बेणेश्वर त्रिवेणी संगम रे जल सु भगवान शिव रे अभिषेक करण ने लेर लोगा माए उछास बनेड़ो है। नागौर माए आज निकाली जी कावड़ यात्रा माए हजारां री तादाद माए श्रद्धालु भेड़ाव्या। तालाब सु शुरू हुई यात्रा रो जगह जगह

0: स्वागत करियो गयो। आम जन सरोवर रो पूजन कर जल संरक्षण री शपथ भी ली।
1: सरोवर पूजा के बाद सुबह शुरू हुई यात्रा में श्रद्धालु कावड़ लेकर शामिल हुए। यात्रा विजय वल्लभ चौक, दिल्ली गेट, एयर रोड और गंध चौक होते हुए शिवबाड़ी मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए और शहरवासियों ने पुष्प और शक्कर कावड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान जीवंत झांकियों ने आकर्षण बढ़ाया। मंदिर पहुंचने पर संत महात्माओं के प्रवचन, भस्म आरती और धार्मिक कार्यक्रम हुए। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज मेवाड़ रा एकलिंग जी महादेव मिंदर माए दर्शन कर पूजा अर्चना करी। इनसु पहलियां उदयपुर दौरे माए राज्यपाल मथाथा थापित मेवाड़ रा संस्थापक बप्पा रावल री प्रतिमा माथे पुष्पांजलि अर्पित कर पैनोर मारो अवलोकन करियो। राज्यपाल बप्पा रावल ने भारतीय इतिहास रो महान योद्धा बताता थका सगड़ा ने वाणे जीवन सु प्रेरणा लेवन रो हेलो करियो। राजसमंद जिले रा पीपलात्री गांव माए आज बेटियां पेड़ा ने राखी बांधर पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दियो। इन रचालता लोगां पौधारी आरती भी उतारी और वाणी सुरक्षा रो संकल्प भी लियो। कार्यक्रम माए क्षेत्र माए हाल ही माए जन्मी बेटियां री मातावां ने कन्यावां रा नाम भी पौधा लगाया और कार्यक्रम माए जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियां समेत बड़ी तादाद माए ग्रामीण मौजूद रहा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत रे लक्ष्य ने हासिल करने और भारत ने 45 अरब डॉलर री अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनावण में महत्ती भूमिका निभावेला। आज अहमदाबाद में तीजे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जलसा में वणा कहो कि अंतरिक्ष क्षेत्र रा सुधारा सु स्टार्टअप और उद्योग जगत खातिर मौका बदया है। कार्यक्रम में इसरो अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रा निदेशक वी एन राव भी मौजूद था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया स्वस्थ जीवन शैली साइकिल चलाने रहे आपरी दिनचर्या माए भिड़ो करने री अरज करी है। डॉक्टर मांडविया आज विशाखापत्तनम माए ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम रे पाछे मीडिया सु कहो कि साइकिल चलानो फिट इंडिया आंदोलन रो खास हिस्सो है। और अब अंत में खास समाचार एक कर फिर सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो अंतरिक्ष खेतर रा स्टार्टअप्स भारत माए विश्वास जतायो। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस माथे प्रमुख कंपनियां रा सीईओ सु चर्चा करी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आवता त्यौहारा ने देखता थका प्रदेश माए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था ने लेट समीक्षा बैठक ली। अहलकारा ने जन सहभागिता रे साथे काम करने रा हुकुम दिया। प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव ने लेर सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा और कांग्रेस समेत राजनीतिक दला माए उम्मीदवारा ने लेर मंथन तेज हुयो और श्रावण महीना रा अंतिम सोमवार माथे काले शिवालया माए भोलेनाथ रा अभिषेक ने लेर श्रद्धालुआ माए उछास। पवित्र सरोवर सु कावड़ लाने रो सिलसिलो जारी है। इनरे साथे ही प्रादेशिक समाचारों रो ओ बुलेटिन अटे ही पुरोव्यो। माणो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: टेंजरीन बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
4: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
4: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
6: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर। शाम के 7 बजने को हैं। ग्रामीण परिवार सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम चौपाल। आज ही कार्यक्रम आप सुनेंगे मुकेश चांगवरिया के साथ। तो आइए सुने चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुननी है सगळ्या श्रोतावाने मुकेश भाई का घना घना राम राम, मोकळा मोकळा राम राम। किसान भाइयों, खेतीबाड़ी की बात करा तो अब जकी खेती किसान भाई करण लाग रहे है। बा खेती पर्यावरण के लिए, मानव जीवन खातर और अपनी भूमि वास्ते ज़्यादा बढ़िया या फिर लाभदायक कोनी मान सकानी। उत्पादन भले ही ज़्यादा होवन लाग रहे है पर मानव स्वास्थ्य पर बुरो असर भी होवन लाग रहे है। एक टाइम इश्यो आ जासी जिसू अपनी माटी बंजर बन जासी और प्राणी जगत में भांत भांत की बीमारियां, रोग बच जाएगा। आपने आस पास देखा तो बहुत सा ऐसा कीट जका किसान भाइयों का मित्र कीट है वे खत्म हो गया और अब खाद्यान्न का नहीं देखा तो सफाई जहर पैदा करने लाग रहा हैं। इन वास्ते अब भी चेतना जरूरी है, नहीं तो एक टाइम इश्यो आसी कि भूमि में फसल पैदा होनी बंद हो जासी और मानव जीवन का सागे सागे आखी धरती संकट में आ जासी। अपना वैज्ञानिक भी इन बात पर जोर देवन लाग रहे है कि रासायनिक खेती को लारो छोड़ गए और जैविक खेती या प्राकृतिक खेती का नहीं ध्यान देना जरूरी है। भाई लोगों, प्राकृतिक खेती में ज़्यादा पीसो टको भी कौन लागे और अपनी भूमि भी सुरक्षित रहसी, पूरा पर्यावरण भी सुरक्षित बनो रहेगो। अब बात आवे कि प्राकृतिक खेती होवे की है और प्राकृतिक खेती केवा की ना, तो आज आप जिक्र कर सा प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है, के फायदा है और अपना किसान भाई क्या प्राकृतिक खेती कर सके। इनके अलावा आप जैव तरीका भी अपना सका तो बात करांगा। सहसु पहला आप सुन लिया वो भजन सुनो सा।

भाई लोगों सुनियो भजन, बात करा खेती बाड़ी की तो प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त कृषि विधि है जबकि प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के करीजे। इमें सिंथेटिक उर्वरक कीटनाशक या बारिशों ले आगे कोई भी तरह को खाद को प्रयोग कौन करीजे। इनके बजाय आपने खेत में उपलब्ध गाय को गोबर गौमूत्र और अपने आसे पासे प्राकृतिक चीजें जिया के जीवामृत बीजामृत आप पर आधारित खेती करना ही प्राकृतिक खेती है। किसान भाइयों, ई प्राकृतिक खेती में फायदे के अलावा लागत भी कम होवे और मानव स्वास्थ्य पर भी कोई बुरो प्रभाव कौन पड़े और माटी को स्वास्थ्य भी सुधरने के सागे सागे उपजाऊपन भी बढ़े। अब बात करा प्राकृतिक खेती का मुख्य सिद्धांत और घटक के होवे तो भाई लोगों, प्राकृतिक खेती विधि माटी का सूक्ष्म जीव केंचुआ और जैव विविधता ने पुनः जीवित करके करने पर केंद्रित है। बात करा जीवामृत के बारे में तो जीवामृत माटी का सूक्ष्म जीवा ने सक्रिय करने वाली एक प्राकृतिक तरल दवा है। इन्हें देसी गाय के गोबर शू गौमूत्र गुड़ दाल ने आटो बना के और पानी में मिश्रण शू घोल तैयार करके फिर तैयार करी जाए। इन तरह ही बीजामृत भी प्राकृतिक खेती वास्ते बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, बीजामृत बीजांत शू पहली बीज ने रोग शू बचाने वास्ते एक सुरक्षात्मक लेप तैयार करी जाए और इन्हें भी देसी गाय का गोबर और पेशाब से तैयार करना पड़े। भाई लोगों, अपना किसान भाई खेती के सागे सागे पशुपालन भी करें तो गौमूत्र और गोबर आमतौर पर घर में ही मिल जाए। अब बात करा मिलचिंग के बारे में। मिलचिंग एक ऐसा तरीको है जिसे माटी की नमी बनाए रखने खातिर

और पानी भूमि से ज़्यादा ना उड़े, इन्हें रोकने वास्ते खेत की सतह पर फसलों का अवशेष, घास फूस या सूखो कचरो बिछा देवा या हरी पत्तियां से ढक देवा, जिस ज़्यादा गर्मी या हवा चालने पर अपने माटी जल्दी बत्तर को नहीं आवे। इनको एक और भी फायदा है कि जे फसल बीजने गए सागे सागे पूरे खेत में ब्लीचिंग कर देवा तो पानी की बचत तो होगी ही, इनके अलावा खेत में खड़ी फसल में आसे पासे खूड में खरपतवार भी कोनी उगे, वो भी एक फायदा है। तो किसान भाइयों, सब्जियां की फसल के अलावा दूसरी फसलों में भी ब्लीचिंग जरूर करनी चाहिए। किसान भाइयों, फसल चक्र के सागे सागे थाने में कई बार अंतर फसल के बारे में भी बताया करा। फसल चक्र माटी की दशा सुधारे बीतरियाँ ही, जे अंतर फसल यानी रड़वा खेती होवे, एक फसल सागे दूसरी फसलों की बीजांत भी करनी चाहिए। अंतर फसल में दाल और तिलहनी फसलें एक साथ है उगास का, जिसू माटी की उर्वरा शक्ति बढ़े और कई बार एक फसल मौसम या कीट की मार से खराब हो जाए तो दूसरी फसल जकी रड़वा तरीका से बिजाई करिए बा नुकसान की भरपाई कर सके। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती कोई ज़्यादा औखी या खर्चीली खेती कोनी, बहुत बढ़िया है। और आपने प्राकृतिक खेती करनो तो धीरे धीरे रसायन छिड़काव जका है वे कम करके आप पर प्राकृतिक खेती जकी है बस शुरू कर देनी चाहिए, जिसमें आपने फायदों मिले हैं। तो बातें और भी करांगा, पहला आप सुन लिया वो गीत लियो सुनो सा।

भाई लोगों, अब बात करा प्राकृतिक खेती छू किसान भैया ने के लाभ है। किसान भाइयों कम लागत में भूमि सुधार गए सागे अच्छी आमदन भी ले सका। अपना किसान भाई बाजार छू कई महंगा उर्वरक और कीटनाशक खरीद के लियावे और कई बार तो उत्पादन कम होवे और खर्चो ज़्यादा लाग जाए। जे प्राकृतिक खेती करशा तो जहरीला रसायन खरीदने की जरूरत कौन पड़े और अपनों खर्चो भी टड़े। इनके अलावा बात करा तो प्राकृतिक खेती छू और रासायनिक छिड़काव बंद करने छू आपने किसान मित्र कीट भी सुरक्षित रहे सी। आपनों खाद्यान्न तो साफ स्वच्छ और जहर मुक्त होवे गोई। इनके सागे सागे पर्यावरण ने भी कोई भी तरियांगो नुकसान कोनी होवे। माटी में केंचुआ की संख्या में बढ़ोतरी होने छू माटी की जल धारण करने की क्षमता में भी बढ़ोतरी हो सी। किसान भाइयों बिना जहर गो खाद्यान्न भी वापरे गो और स्वास्थ्य ने भी कोई नुकसान कोनी होवे। खाद्यान्न में पौष्टिकता दपाऊगी होवेगी। इनके अलावा प्राकृतिक खेती करण छू पानी की बचत भी हो सी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आ सी। जिया जिया अपनी भूमि रसायन की आदि होगी बिया बिया ही आप धीरे धीरे प्राकृतिक खेती अपना के भूमि की भौतिक दशा सुधार सका। और इनकी ज़्यादा जानकारी आपने आसे पासे का कृषि विशेषज्ञ भी देवता रहे। आपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाके भी आप प्राकृतिक खेती की या अन्य खेती से जुड़ेड़ी जानकारी ले सका। इंगा कोई भी रुपया पीसा टका कौन लगे नहीं। इंगा सागे सागे भाई लोग आप जिया बात करा प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की तो आप जिया बात करा कंपोस्ट खाद के बारे में। इंग माँ आप कैंचुआ की मदद छू कम टाइम का माँ बढ़िया खाद तैयार कर सका। किसान भाइयों कैंचुआ की खाद ने आप वर्मी कंपोस्ट खाद भी कहवा क्योंकि आ एक जैविक खाद है और फसल माटी खातर ज़्यादा उपयोगी है। इंगो एक ओ भी फायदो है कि इनमें आपनों पीसो टको भी कम लगे और फसल ने की भी तरियांगो नुकसान भी कोनी होवे नहीं। किसान भाइयों वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने वास्ते आपा तापमान और नमी को ध्यान रखना जरूरी है। यानी जकी जगह पर कंपोस्ट खाद को टैंक या खुरली बनानी है बी जगह को तापमान और नमी ठीक होनी जरूरी है। इनके अलावा टैंक पर अस्थायी छपरो या शेड भी बनाना जरूरी है ताकि गर्मी सर्दी बरसात से खाद और कैंचुआ ने आप बचा सका। अब बात करा आप टैंक बनाने की विधि यानी तरीका के बारे में। इंगा मैं आप अनुमानित टैंक या फिर खाद की मात्रा के हिसाब से छोटो मोटो भी कर सका। मोटे तौर पर जिया 1 मीटर चौड़ो आधो मीटर गहरो और 10 मीटर के लगभग लंबाई में टैंक तैयार करना है। खाद तैयार करने खातर सामग्री के रूप में आप वनस्पतिक कचरो जिया फसली कचरो घास फूस सड़ी गली सब्जियाँ फल फ्रूट का छिलका और पेड़ पौधों की सूखी पत्तियाँ पशुओं के ठाण में बच्चेड़ो नीरो हरियो चारो इनके अलावा पशुओं के गोबर की जरूरत पड़ेगी। किसान भाइयों सूखो कचरो आप पहली गोबर के घोल में 15 दिन तक सड़ा के फिर ही खाद के लिए इस्तेमाल करना है ताकि कचरे की गर्मी खत्म हो जाए। क्योंकि कई बार यूँ हो कि अपना किसान भाई जगह है वे ताजो कचरो नाक देवे बीच उमस पैदा हो जाए और फिर अपने कैंचुओं की मौत होनी शुरू हो जाए। तो इन बात को ध्यान रखना जरूरी है। इन तरियाँ आप 6 इंच मोटी परत बना के ठंडा एड़ा गोबर नाक देवा। इनके बाद किसान भाइयों जकी आप गोबर की परत लगाई है बिंगा ऊपर 500 से 1000 कैंचुआ प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से छोड़ देवा। तो इन तरियाँ आप कैंचुआ से बढ़िया बढ़िया जकी है वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर सका। लेकिन किसान भाइयों कैंचुआ खरीद करने से पहले आप बढ़िया

असलगा या किस्म का कैंचुआ को ही चुनाव करना है। जी हाँ, बात करा आप बढ़िया प्रजाति का कैंचुआ में आइसिनिया फोर्टिडा, यूडिलस यूजिनी और परियोनिक्स एक्सावेटस, ये कैंचुआ की बढ़िया प्रजातियां हैं। इनके अलावा आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या विशेषज्ञों से भी इनके बारे में जानकारी ले सका। और बढ़िया उन्नत किस्म या प्रजाति का कैंचुआ ले आगे बढ़िया खाद तैयार कर सका। किसान भाइयों, कैंचुआ छोड़ने के बाद भी आपने एक परत 1 फीट ऊंची अध सड़े और बारीक कचरे की तह लगानी है। इन तरह कचरे को ढेर जब 2 से 3 फीट ऊंचा हो जाए तो बाद में आपा इन ढेर ने ऊपर से जूट के बोरा छू या टाट पट्टी छू अच्छी तरह ढक देना है। किसान भाइयों, शेड में हमेशा अंधेरों बना के रखना है क्योंकि अंधेरा में कैंचुआ ज़्यादा सक्रिय होवे। इन वास्ते शेड के चारों मेर घास फूस या बोरा लगा देना चाहिए। बोरा के ऊपर नियमित रूप से जरूरत के हिसाब से पानी को छिड़काव करना जरूरी है ताकि टैंक में नमी बनी रहे। इनके अलावा किसान भाइयों, कचरे के ढेर ने 25 से 30 दिन बाद हाथ छू और या कोई अन्य औजार छू उल्टा पलटी करता रहना चाहिए, जगह की वजह से ढेर को तापमान और वायु संचार भी बढ़िया बनो रहे। इन प्रक्रिया ने 2-3 बार दोहराव करना है। और भाई लोगों, टैंक के अंदर को तापमान आपा ने 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और नमी जकी है वह 30 से 35% तक बनाए रखनी है। मोटे तौर पर रोजीना आपा ने 30 से 90 लीटर पानी टैंक खातर रखना है। इन तरिया ही आ खाद 60 से 75 दिन में बन के तैयार हो जाए। जिया जिया खाद तैयार होए, बिया बिया कैंचुआ तले की तरफ जामता रहे। फिर आपा खाद निकाल गए और कैंचुआ ने फेरू भी काम में ले सका। इकट्ठी करड़ी खाद ने 2 से 4 दिन छिया में सुखा गए, नमी थोड़ी कम कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, ई खाद ने आपा बोरा में भर के 1 साल तक काम में ले सका। कंपोस्ट खाद को प्रयोग करने से कई तरह का फायदा हुआ है। जिया वर्मी कंपोस्ट माटी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करे और भूमि में जैविक क्रियावां की निरंतरता जकी है बा बनाए रख है। तो इनके बारे में बात और भी करांगा, पहला आप सुन लिया ओ भजन सुनो सा।

सागे वर्मी कंपोस्ट को लगातार प्रयोग करने छूं, खेत में उगन आल खरपतवार भी कम हो जाए। किसान भाइयों, जे आपा एक बार खेत में वर्मी खाद नाख दी तो दो तीन फसलों तक बा खाद काम करेगी और अपना फालतू को जो को खर्चो है वो भी टलेगो। भाई लोगों, वर्मी खाद छू माटी भुरभुरी होने के सागे सागे माटी की जल धारण करने की क्षमता में भी बढ़ोतरी हो जाए, जगह की वजह छू आपा कुछ हद तक पानी की भी बचत कर सका। इनके अलावा पर्यावरण और अपना मित्र कीट है वे भी सुरक्षित बने रहे। इसे बहुत सा फायदा है जे आपा वर्मी कंपोस्ट खाद को उपयोग करा तो, क्योंकि कंपोस्ट खाद में अच्छी फसल उपज खातर बहुत सा जरूरी पोषक तत्व तो होवे, जका अपनी फसल की बढ़वार और उपज दोनों में फायदो करे। जी हम बात करा आपा गोबर की खाद 6 महीना में बढ़िया खाद के रूप में तैयार हुए, और गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 0.3 से 0.5% तक हुए, फास्फोरस की मात्रा गोबर की खाद में 0.4 से 0.6% तक हुए, और पोटाश की मात्रा 0.4 से 0.5% तक हुए। यही कंपोस्ट खाद 4 महीना में बन के तैयार हो जाए। इनमें नाइट्रोजन की मात्रा 0.5 से 1% तक हुए, फास्फोरस की मात्रा 0.5 से 0.9% तक हुए, और कंपोस्ट खाद में पोटाश की मात्रा 1% तक हुए। आप यहाँ कह सकें कि गोबर की खाद की तुलना में कंपोस्ट खाद ज़्यादा कारगर हुए। अब किसान भाइयों, बात करा वर्मी कंपोस्ट खाद जो कि केंचुआली खाद है, भी में नाइट्रोजन की मात्रा 1.2 से 1.6% तक हुए, फास्फोरस की मात्रा 1.5 से 1.8% तक हुए, और पोटाश की मात्रा 1.2 से 2% तक हुए। यानी वर्मी कंपोस्ट खाद ने आपा सर्वश्रेष्ठ खाद मान सका। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपा वर्मी कंपोस्ट खाद या कंपोस्ट खाद को ही प्रयोग करा तो बढ़िया रहे। इनका सागे सागे भाई लोगों, खाद तैयार करता टाइम कई तरह की सावधानियां भी बरतनी जरूरी है, ताकि आपा कम खर्च और खेचड़ में बढ़िया खाद तैयार कर सका। जठा तक हो सके आपा गाय को गोबर ही इस्तेमाल करा, और खाद के कचरा में आक या धतूरे का पत्ता नहीं नाखना है, क्योंकि अंग दुष्प्रभाव से केंचुआ खत्म भी हो सके। वर्मी कंपोस्ट को शेड हमेशा छायादार जगह में ही बनाना है, और सड़े गले कचरे और गोबर को अनुपात भी सही रखना है। लेकिन एक बात को ध्यान और रखना जरूरी है कि गोबर कभी भी टैंक में ताजो नहीं नाखना है, क्योंकि गोबर की गर्माश से केंचुआ मर भी सके। इन वास्ते गोबर हमेशा 8 से 10 दिन पुराना ही होना जरूरी है। इनके अलावा कठोर डंठल और टहनियाँ को प्रयोग कचरा में नहीं करना है, और खरपतवार का अवशेष नाखता टाइम वो ध्यान रखना है कि बीजदार अवशेष नहीं होना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बेड को तापमान 25 से 30 डिग्री और नमी 30 से 35% तक होनी जरूरी है। तो आ बात ने ध्यान में रखना है, और बिया तो आ खाद आपने पूरी तरह पर्यावरण मित्र विधि है। इंगा माँ की भी तरह कोई रासायनिक दुष्प्रभाव कौन पड़े नहीं। इन वास्ते बढ़िया प्रजाति का केंचुआ ले आगे बढ़िया खाद तैयार आपा कर सका। इनमें कोई ज़्यादा खर्चो को नहीं, कोई ज़्यादा खेचड़ को नहीं, बस केंचुआ की व्यवस्था आपा ने करनी है। बिया केंचुआ आपा सीमित मात्रा में ले आगे और थोड़ी थोड़ी करके जे खाद तैयार करा तो आपा आपने पूरे खेत के लिए खाद तैयार कर सका। छोटी मोटी बागवानी या सब्जी उगाने के लिए भी इन खाद को प्रयोग कर सका। किसान भाइयों, मोटे तौर पर देखा तो 1000 केंचुआ का वजन 1 किलो का लगभग हुआ है, और 1 किलोग्राम केंचुआ एक दिन में लगभग 5 किलोग्राम कचरा ने खाद में बदल देवे। जे आपा 10 से 15 क्विंटल कचरा से खाद तैयार करनी है तो आपा 5 से 6 क्विंटल तक बढ़िया वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर सका, जबकि अपनी भूमि के लिए तो फायदेमंद हो गई है। ई खाद से पैदा होने वालों अन्न, साग सब्जी, फल फ्रूट, ये सब रासायनिक जहर से पैदा करने की बजाय ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक, लाभदायक और हानि रहित हो। तो अब धीरे धीरे आप रासायनिक खेती छोड़ के जैविक खेती का नहीं ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी पर्यावरण, पशु पक्षी, भूमि, पानी, हवा सब जहर रहित हो और कई तरह की बीमारियां से भी आप बच सका। तो आ सगली बातों को ध्यान रखिए, आप खेती करा तो आप अच्छा मुनाफा ले सका। पर अब आप सुन लिया वो गीत लियो, सुनो सर।

भाई लोगों सुनियो भजन, बात करा अपा वर्मी कंपोस्ट की। तो भाई लोगों वर्मी कंपोस्ट का फायदा के है बे आपा देखा। तो वर्मी कंपोस्ट को ज़्यादा उपयोग करने से भूमि जकी है बा भुर भुरी और ज़्यादा उपजाऊ बने। इनके अलावा वर्मी कंपोस्ट से खेत में दीमक और दूसरा नुकसान पुगावने वाला जीवाणुआ ने जगह है वे खत्म कर देवे।

जीशु आपा ने पशु पालन करने में कोई परेशानी को नहीं होवे। बहुत सा पशुपालक भाई पशु पालन करके दूध घी दही छाछ आशु व्यवसाय करे और अच्छी नस्ल का पशु राख के अच्छो मुनाफो भी कमावे। इनके अलावा भाइयों पशुओं को गोबर मूत्र बीजों अच्छी गुणवत्ता वाली खाद तैयार करके बेचने को धंधो भी करे और स्वयं गए खेत में नाग के भी अच्छी फसल पैदावार लेवे। तो आप कह सका कि आम का आम और गुठली का दाम यानी डबल मुनाफो, लेकिन खेती की भांति पशुपालन भी हर पशुपालक भाई ने पूरी जानकारी या जो कि राख के फेर करना चाहिए। हर पशुपालक ने पशुओं की नस्ल को पूरा ध्यान होना जरूरी है, पशुओं के आहार की पूरी जानकारी होनी जरूरी है, किसा पशु ने कितो आहार देना है, मौसम मुजब पशु की देखभाल किया करनी है, पशु बीमार हो जाए तो बिंगे लक्षणा ने पहचानना जरूरी है। ये बहुत सी बातें हैं जका की जानकारी हर पशुपालक भाई ने रखनी चाहिए। इनके अलावा ज़्यादा दूध उत्पादन खातर अच्छी नस्ल का पशुओं का चुनाव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भाई लोगों जका पशु ब्याण आला है या जका पशु दुधारू है बांगी रोज की देखभाल भी जरूरी है ताकि पशु अच्छो मुनाफो आपने दे सके। भाई लोगों जका पशु ब्याण आला है बांगी भी पूरी देखभाल आपने करनी चाहिए क्योंकि पशु में ब्याणेशु पहली कई तरह का शारीरिक बदलाव देखने मिले। ब्याणेशु एक दिन पहली गर्भित पशु का जनन अंगाशु लिसलिसो द्रव्य निकलना शुरू हो जाए, इन वास्ते आपने पशु को पूरा ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए और कुत्ते बिल्ली शू भी बचाव रखना जरूरी है। कई बार पशु ने ये जानवर नुकसान पुगा सके। भाई लोगों पशु ब्याण वाले टाइम आप कई जानी जान कोई जो जानी जान इंसान है बिना कन्ने रखना चाहिए और जका पशु ओखो ब्यावे तो बाँ पशुआ ने डॉक्टर साहब से पूरी जानकारी लेके फिर ही पशु ने ब्यांत कराना चाहिए। कई मिनक है बे जोर अजमाइश बच्चों है बिना बाहर निकालने की कोशिश करे तो ईशो कतई नहीं करना चाहिए, ईशू बच्चा ने नुकसान हो सके। इन तरह ही पशु गए ब्याणे गए 15-20 मिनट बाद नवजात बच्चे ने दूध पिला देना चाहिए क्योंकि खीस वालों दूध बहुत बढ़िया और स्वास्थ्यवर्धक दूध होवे। भाई लोगों पशु ब्याणे के बाद जिया गाय या भैंस है तो बिना 2-3 बार काढ़ो बना के पिलाना चाहिए। काढ़े का मांस सौंफ 200 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, अलसी 200 ग्राम 5 लीटर पानी में खूब उबाल के बिमें 1 किलो गुड़ मिला के और ठंडो करके गाय भैंस ने पिला देना है ताकि पशु का स्वास्थ्य अच्छो बनो रहे। पशु ब्याणे के बाद बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लग जाए, इन वास्ते आसानी से पचन वालों आहार ही पशु ने खिलाना चाहिए। पशुपालक भाइयों ब्याण वाले पशुओं का आखिरी 3 महीने है बेजोखिम भरिया हुआ है। इन वास्ते पशुपालक भाइयों ने पशुओं के ब्याणे के टाइम और बिंगे तुरंत बाद पूरो ख्यांत और पूरी सावधानियां बरतनी जरूरी है। जियाँ जियाँ पशु के ब्याणे को टाइम नज़दीक आवे बियाँ बियाँ पशु का थन विकसित और आकार में बड़ा होना शुरू हो जाए। प्रसव काल शुरू होने तक ही पशु कई बार उठा बैठी शुरू कर देवे, पशु कम चरणों शुरू कर देवे और जरूरी बात आ है कि प्रसव से 1.5-2 महीना पहली डॉक्टर साहब ने बुला के पशु ने कृमिनाशक दवा जरूर पिलानी चाहिए। बिया मोटी जानकारी के तौर पर प्रसव का 3 चरण होवे। गाय भैंस प्रसव के पहली चरण में 2-24 घंटा टाइम लेवे। जब पशु उठा बैठी करण लाग जाए तो आपने समझ जानो है कि पशु आज ब्यांत हो सी। पशु के गर्भधारण करने गसा गई आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से पशु ने दिखाता रहना जरूरी है और पशु की टाइम टाइम पर जांच परख करता रहना भी जरूरी है। और सबसे ज़्यादा और सहसु ज़्यादा सावधानी जकी जरूरी रखनी है बा आ है कि ब्यान वाले पशुओं को बाड़ो आप दूसरा पशुओं से अलग बनाना चाहिए और जका पशु लड़ाकू है या बीमार है वहाँ पशुओं से ब्यान वाले पशु ने दूर रखना चाहिए। कई बार पशु आपस में लड़ पड़े बीच ज्ञापित पशु ने नुकसान हो सके, इन वास्ते अलग अलग ठाण और अलग अलग निराचारी करनी ठीक रहे। तो आम बातों को भी आपने पूरा ध्यान रखना है। पशु ने बीमारता टाइम आप देखा कि कई भाई लोग हाथों के रेतो या माटी राख लगा के पशु ने बीमारे तो वो तरीको गलत है, ईशू बच्चा ने नुकसान हो सके, संक्रमण भी फैल सके। कई बार पशु की बच्चेदानी भी संक्रमित हो जाए जिस बहुत बड़ो नुकसान हो सके। पशु ब्याणे के बाद बच्चे ने दूध पिलाना जरूरी है, जेर चाहे गिरेड़ी है या नहीं बच्चे ने माँ को दूध जरूर पिलाना है। भाई लोगों ब्यांत पशु को पूरो दूध जक ने आप खींच के देवा पूरी पूरो जो को है वो नहीं निकालना चाहिए, ईशू दुग्ध ज्वर नामक बीमारी होने की संभावना रहे। ब्याणे के बाद पशु की जेर धीरे धीरे बारा आवे और पशु को गर्भाशय सिकुड़ना शुरू हो जाए। जिया ही जेर गिरे बिना पशु शू दूर कर देना चाहिए क्योंकि कई बार देख

हाँ, के पशु जेर खा भी जावे, जकै की वजह से पशु बीमार भी हो सके, तो जेर जकी है बिना उठागे दूर ले जाके फेंक देनी चाहिए। ब्याणे के बाद पशु ने उबलेड़ा चावल, बाजरो, तेल मिलागे, गुड़, सोयाबीन, अजवाइन, मेथी, ये सब खिलाना जरूरी है ताकि जेर है जकी बा जल्दी गिर जाए। बिया तो 10 से 12 घंटा तक जेर गिर सके, इनमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत कोनी। फिर भी 1 दिन या 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लागे तो तुरंत डॉक्टर साहब ने बुलाओ। इनके अलावा साफ जल पिलाना है, संतुलित आहार देना है, और जिज्ञा और ठाण टाइम टाइम पर साफ सुथरा रखना है। बाकी दूसरा पशुओं को भी आपने पूरा ख्याल रखना है ताकि आप अच्छा दूध उत्पादन ले सका। पर अब आप सुन लिया वो भजन, सुनो सर।

भाई लोगों, बात करा भोजन की पौष्टिकता के बारे में, क्योंकि आप बात थे भी जानो कि भारत में लगभग 70% जनता गांव में निवास करे, जका में कुछ मिनख आज भी अशिक्षित यानी अनपढ़ है। और ये अनपढ़ता के कारण संतुलित और पौष्टिक भोजन के ज्ञान के अभाव में बहुत सी बीमारियां शू पीड़ित रहे। कई बार ज़्यादा खर्चा का डर शू भी अच्छो भोजन या खाणो पीणो कोनी कर सका। भाई लोगों, बहुत सा ऐसा माध्यम है जिसे कम खर्चा में अपने आसे पासे या घर में उपलब्ध खाने पीने की चीज़ों से स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बना के शरीर की पोषण संबंधी जरूरत ना आप पूरी कर सका। भाई लोगों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद को एक सिद्धांत है कि कम खाओ लेकिन जो भी खाओ अच्छो और हित कर खाओ, जिसे स्वास्थ्य अपनों जो है निरोग बने रहे। इनको मोटो सो अर्थ हो ही है कि जितनी भूख है बीसू थोड़ो कम खाओ, और आप बात अपना बूढ़ा बडेरा भी कहता, और साफ और ताजो खानो ही आपने हमेशा खानो चाहिए। भाई लोगों, आपने घर में ही आसानी से उपलब्ध साधना का उचित उपयोग करके अपना स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से प्रोटीन ऊर्जा ले सका और कुपोषण से बच सका। श्रोताओं, कई इसी आसान सी विधियां हैं जिसे आपने खाने की पोषक गुणवत्ता जो कि आप बढ़ा सका, जिया अंकुरित अन्न, मिश्रित भोजन आदि। बात करा अंकुरित अनाज की, तो अंकुरण एक इसी प्रक्रिया है जका मैं की भी तरिया को खाद्यान्न या अनाज, दलहन या साबुत दाना ने आपा उचित हवा, तापक्रम, नमी के माध्यम से अंकुरित कर लेवा, यानी अनाज ने उगा लेवा। जब अनाज उगनो शुरू हो जाए और जड़ा निकलनी शुरू हो जाए, तो बाद में आपा भी ने खाने के काम में ले सका। भाई लोगों, अंकुरित अनाज यानी जब बीज उगनो शुरू हो जाए, तो बी माए जैविक रासायनिक क्रियावां शू दाना में पौष्टिकता की बढ़ोतरी हो जाए। अंकुरित कणक में प्रोटीन की मात्रा लगभग 2.5 से 3 गुना तक बढ़ जाए। और अब थाने बता देवा कि लगभग सगला खाद्यान्न में विटामिन सी की 25 से 30% तक बढ़ोतरी हो जाए। भाई लोगों, अंकुरित अनाज में लोहा, फॉस्फोरस, विटामिन बी भी सांगोपांग मात्रा में बढ़ जाए। और इनके अलावा छिलकाड़े अनाज में फाइबर दपाऊ गो हुए, जका मिन खांगे कब्ज की समस्या रेवे, तो वे छिलका समेत अनाज खानो चाहिए। अपना बूढ़ा बडेरा पुराना टाइम में दलियो, खिचड़ी, लापसी, घूगरी जकी कणक ने उबाल के तीज त्यौहार पर खाता, तो वो एक अच्छो और पौष्टिकता से भरेड़ो खाद्यान्न हों तो जको छिलका समेत खा लेता। अपा घरे रोटी बनावा और घर की माताओं बहना आटो छाण गए जकी चोकर बारे फेंक दे, तो ईशो जको अपन नहीं करना चाहिए। चोकर में भी फाइबर भरपूर मात्रा में हुए। भाई लोगों, छिलकाड़ी दाल यानी साबुत दाल जका गमा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होवे, इन वास्ते आपने हमेशा छिलकाड़ी साबुत दाल को ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में करना चाहिए। पहली आप बात करी कि चोकर युक्त आटे से बनेड़ी रोटी या भोजन ही खानो चाहिए। पहली तो पुराने टाइम में गर्गी जकी चाकी से हाथ से अनाज पीस गए भोजन तैयार कर लेता। इनका और भी कई फायदा है, जिया चाकी चलाने से कसरत भी हो जाती और स्वास्थ्यवर्धक आटो भी तैयार हो जाता और कणक का पोषक तत्व भी सुरक्षित रह जाता। लेकिन ये भागदौड़ भरी जिंदगी में मिनक पुरानो खानो पीणो भी लगभग छोड़ दियो है। भाई लोगों, ऐसा बहुत सा पोषक तत्व मोटा अनाज में और चोकर में होवे जका अपने स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होवे। बाजरे को खिचड़ो, दलियो, राबड़ी ये सब शुद्ध और सुपाच्य भोजन होवे। चालनी से छाण गए जका आटे की रोटी बनावा भी शू ज़्यादा अच्छी बिना छाणे आटे से बनेड़ी रोटी होवे, क्योंकि कणक की चोकर में बहुत सा खनिज तत्व, विटामिन, खनिज लवण होवे जका आपा आटो छाण के फेंक देवा, या नहीं करनो है। जब भी आपा अनाज पिसवावा तो हमेशा मोटो आटो रखा, बिल्कुल बारीक या कप्पड़ छाण जिसो आटो हमेशा नुकसानदायक होवे। भाई लोगों, आप बात करा आपा राम रोटी की, वो भी एक सुपाच्य और पौष्टिक खाणो है। जका भाई मिनक रोटी खाणो पसंद ना करे, वे राम रोट बना के भी खास कहे, ज़्यादा खेचड़ भी कौनी और ज़्यादा टेम भी कौन लगे। भाई लोगों, राम रोट सब्जियां ने आटा में गूंद के बनाई जाए, जिया पालक, मेथी, बथुओ, चौलाई आने सगड़ा ने बारीक काट के थोड़ो पीस लेवे और बाद में आटे में गूंद लेवे। इंग में तोरी, गाजर, मूली, पेठो, लौकी जकी भी सब्जी अपने घर मौजूद है, बिने कद्दूकस करके भी आपा इनमें मिलास का। श्रोताओं, राम रोट ने और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने खातर इंग में आपा अजवाइन, मेथी, नमक भी मिला सका। और जब राम रोट तैयार हो जाए तो बाद में दही या सीधो भी आपा खास का, बड़ो स्वादिष्ट और अच्छो लगे। देखो

स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हुए। तो जरूर राम रोट बना के खाया करो। दूध आटे की रोटी को जिकर करा तो आपने घर में जका टाबरिया दूध ना पिए, बने दूध आटे की रोटी बना के खुआ सका, ताकि दूध शुम बच्चा ने प्रोटीन भी मिल जाए, टाबरिया के वास्ते वो खाना बड़ो फायदेमंद हो। तो जरूर जका टाबर दूध ना पिए, बने दूध आटे की रोटी बना के जरूर खिलानी है। बिया टाबरा के साथ साथ कोई भी खास कहे, वो एक संतुलित आहार है, सबके लिए फायदेमंद हो। मिसी रोटी भी बड़ी गुणकारी होवे। इन्हें बनाने खातर कणक के आटा में एक दोबो या जरूरत के हिसाब से मोठ मूंग या चने को आटो मिला लेवा और गूंद लेवा, क्योंकि दाणा के माँ प्रोटीन भरपूर मात्रा में होवे और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होवे। जब भी आपने आटो पिसवावा तो बी टाइम थोड़ा सोयाबीन की दाल है जो कि कणक में मिला देवा, तो वो आटो भी फायदेमंद होवे। 10 किलो गेहूं में 2 किलो सोयाबीन मिला देवा तो ज़्यादा बढ़िया रहे, क्योंकि सोयाबीन में 43% तक प्रोटीन होवे। तो अपने मिसी रोटी भी खानी चाहिए। पुराने टाइम में लोग खाया करता और स्वस्थ भी रहता। जौ मूंग मोठ चना की रोटी अपने जरूर खानी चाहिए। तो इन तरह से जो आप खाणो खावा तो अपने भरपूर मात्रा में पौष्टिक जगह गुणकारी जकी पोषण है वो अपने मिलेगा। तो अब आप सुन लिया वो गीत लियो सुनो सा।

ग्रामीण परिवार सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर रात के 8 बजे हैं। कार्यक्रम सुने एक ही फिल्म से।

एक दूजे के लिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म के गीत और फिल्म संबंधी कुछ रोचक जानकारी। श्रोताओं, ये फिल्म एक दुखांत प्रेम कहानी पर आधारित है जिसका निर्देशन के बालाचंद्र द्वारा किया गया और इस फिल्म के मुख्य कलाकार कमल हासन और रति अग्निहोत्री हैं। ये फिल्म अपने समय की बहुत सुपरहिट फिल्म रही, दर्शकों का इतना प्यार से मिला कि फिल्म फेयर की जो पुरस्कार होते हैं 13

अलग अलग श्रेणियों में इसे नामित किया गया, जिसमें से 3 फिल्म फेयर पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में इसे मिले। इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया और इस फिल्म के बेहद खूबसूरत गीत आनंद बख्शी ने लिखे।

श्रोतो, यह फिल्म एक तमिल आदमी वासु यानी कमल हासन और उत्तर भारतीय महिला सपना यानी रति अग्निहोत्री के बीच प्रेम की एक कहानी है, जो गोवा में पड़ोसी हैं और पूरी तरह से अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। वे शायद ही कभी एक दूसरे की भाषा बोल सकें, समझ सकें, और उनके माता पिता एक दूसरे को बहुत घृणा करते हैं, जिनके बीच नियमित रूप से झड़प होती रहती है। इधर वासु और सपना अपनी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे ही उनके माता पिता को इस बात का पता लगता है, वे बहुत नाराज होते हैं। वे सपना और वासु को अलग करने के लिए एक चाल चलते हैं। उनके माता पिता एक शर्त रखते हैं कि वासु और सपना को एक साल के लिए एक दूसरे से अलग रहना होगा, और यदि इस अवधि में वो एक दूसरे से अलग रह पाते हैं और उसके बाद भी वे ये सोचते हैं कि उन्हें साथ रहना है, शादी करनी है, तो उनके माँ बाप उनकी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन साल के दौरान उनके बीच कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। वासु और सपना बिना मन से ही लेकिन इस शर्त को मान लेते हैं और अलग होने का फैसला कर लेते हैं। श्रोताओं, कहानी आगे किस तरह बढ़ती है वो सुनते हैं इस गीत के बाद।

तो इस तरह वासु हैदराबाद चला जाता है और सपना वहीं अपने माता पिता के पास रहने लगती है। दोनों अलग अलग रहते हैं और बहुत उदास भी रहते हैं। हैदराबाद में वासु एक संध्या नाम की महिला से मिलता है जो कि एक विधवा होती हैं और

उसे हिंदी सिखाती हैं। इधर गोवा में सपना की माँ सपना के दिमाग से वासु का ख्याल निकालने के लिए गोवा में ही एक परिवार के मित्र के बेटे चक्रम यानी राकेश बेदी को बुलवाती हैं। सपना राकेश को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। राकेश को सपना और वासु के प्रेम के बारे में जब पता चलता है तो वो वासु से मिलने जाता है और उसे सपना और खुद की शादी के बारे में कहता है कि सपना उससे शादी करने के लिए तैयार है। वासु इस बात को सुनकर बहुत नाराज होता है, परेशान हो जाता है और वो भी बदले में संध्या से शादी करने का फैसला करता है। हालांकि संध्या को वासु के असली प्रेम के बारे में पता होता है तो वो स्थिति को समझते हुए गोवा में जाकर दोनों प्रेमियों के बीच गलतफहमी दूर करने का प्रयास करती है। वासु फिर गोवा लौटता है और सपना के माता पिता को अपनी हिंदी के साथ प्रभावित करता है। वासु जब सपना से मिलने जाता है तो उसे सपना के भाई रजा मुराद किराए पर लाए हुए गुंडों द्वारा हमला कर दिया जाता है। इधर पुस्तकालय अध्यक्ष सुनील थापा द्वारा सपना के साथ बलात्कार हो जाता है और वो उसे तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ देता है। फिल्म त्रासदी के साथ जब समाप्त होती है, जब सपना और वासु अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला लेते हैं और चट्टान से कूदकर अपनी जान दे देते हैं।

फिल्म के बेहतरीन गीतों को अपनी आवाज दी लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम, अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल ने। श्रोताओं, एक विशेष बात हम आपको बताएं कि एसपी बाला सुब्रमण्यम की हिंदी गानों वाली ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म के लिए 1982 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया।

श्रोताओं, इस फिल्म को 13 अलग अलग फिल्म फेयर पुरस्कारों की श्रेणियों के लिए नामित किया गया। एलवी प्रसाद को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए, के बालाचंद्र को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार के लिए, कमल हासन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए, रति अग्निहोत्री को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए, माधवी को सहायक अभिनेत्री पुरस्कार के लिए, असरानी को सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार के लिए, वहीं के बालाचंद्र को सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया। लेकिन के बालाचंद्र को पुरस्कार मिला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी नामित किया गया सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार के लिए। लेकिन सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार के लिए पुरस्कार मिला आनंद बख्शी को। आनंद बख्शी को भी दो गीतों के लिए नामित किया गया था, लेकिन जो पुरस्कार मिला वो मिला तेरे मेरे बीच में इस गीत के लिए। और एसपी बालासुब्रमण्यम को भी सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार भी मिला।

इसी के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं समाप्त होता है। अपने साथी विशाल को दे अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी के गॉर्डन थ्री चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 8:30 बजे हैं। स्पोर्ट्स स्कैन कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। आज कार्यक्रम में बात की जाएगी विशाखापट्टनम में हुई ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की, जहां पर संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है आंध्र प्रदेश में। और कार्यक्रम में रुक किया जाएगा ईस्ट बंगाल एफसी का, जिसने 135वां ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। और 22 वर्षों का इंतज़ार इस टीम ने आज मोहन बगान को 4-1 से हरा करके पूरा किया। कार्यक्रम में जिक्र किया जाएगा महिला हॉकी विश्व कप का, जहां आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। और सेमीफाइनल में अगर भारतीय महिला टीम को पहुँचना है तो उसकी नज़रें हर हाल में ये मुकाबला जीत कर प्रतियोगिता में आगे की राह तय करने पर होंगी। और क्रिकेट के मैदान की खबरों पर नज़र डाली जाएगी, जहां कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शुरू हो गया और भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार

0: फिर अपनी शानदार बल्लेबाजी से मैच के पहले ही दिन से अपनी पकड़ मजबूत की है और देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से फिर निकला है एक शानदार शतक। और नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज संपन्न हो गई। तो खेल के मैदान की तमाम खबरों से पहले आज बात की जाएगी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की, जहां ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज संपन्न हो गई। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जिसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। और अगर इसके मेन कंक्लूजन की बात की जाए तो इन दिस मीटिंग हेल्ड अंडर द ब्रिक्स चेयरशिप 2026 ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अ फ्रेश पुश टू कोऑपरेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज इन स्पोर्ट्स विद अ फोकस ऑन यूथ डेवलपमेंट, इंक्लूजन, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल एक्सचेंज।
1: The key outcome of the meeting has been the proposal to establish a BRICS working group on sport technology to promote cooperation in sports science, artificial intelligence, digital transformation and athlete performance. India's proposal for a BRICS sports manufacturing conclave has also received broad support. The inaugural conclave is proposed to be held in Udaipur in November this year, providing a platform for manufacturers, investors, technology companies and research institutions to share, expert and promote innovation. Another major initiative is the BRICS traditional and indigenous sports demonstration game proposed to be held in Ahmedabad in October. The event will showcase the rich sporting heritage of BRICS countries and strengthen culture and people-to-people ties. Union Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia called for a big sporting partnership that moves beyond declarations and leads to practical cooperation through athlete and coach exchanges, joint competitions and knowledge sharing. The successful BRICS Sports Ministers meeting has laid the foundation for sustained sporting collaboration among BRICS nations. Allu Murli, Akashvani News, Visakhapatnam.
0: तो हमारे संवाददाता ने बताया कि आखिर क्या कंक्लूजन निकला इस बैठक का। और इस बैठक से पहले केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स फ्रेंडशिप साइकिलिंग इवेंट का नेतृत्व किया। ये फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 87वां संस्करण था। ब्रिक्स युवा और खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान इस इवेंट का आयोजन किया गया। इस सप्ताह की फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का विषय है उन्नत भारत अभियान। इस दौरान मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, यूएई, ईरान और दक्षिण अफ्रीका के मंत्री और विभाग के प्रमुखों ने साइकिलिंग इवेंट में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि विशाखापट्टनम में ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर ब्रिक्स फ्रेंडशिप संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया।
2: आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स समिट के अवसर पर ब्रिक्स फ्रेंडशिप संडे ऑन साइकिलिंग का आयोजन करा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फिट इंडिया मूवमेंट आगे बढ़ रही है। देश में आज 18,000 से अधिक स्थान पर संडे ऑन साइकिलिंग करके हमारे देश के युवाओं ने फिटनेस का संदेश दिया है। विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग फिट रहे, स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मोदी जी ने देश को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प कराया है। हम सब लोग मोदी जी के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए एवरी संडे साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें।
0: तो संडे यानी फिटनेस की डोज। और अब इसके बाद रुख करते हैं फुटबॉल के मैदान का, जहां ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। ईस्ट बंगाल एफसी ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम यानी युवा भारतीय क्रीड़ांगन में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता है। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिंगा ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगा करके टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिपिन सिंह ने पहले 10वें मिनट में ईस्ट बंगाल के लिए स्कोरिंग की शुरुआत की और उसके ठीक 2 मिनट बाद लाल रिंदिंगा ने बढ़त को दोगुना कर दिया। 23वें मिनट में उन्होंने फिर एक गोल किया और ईस्ट बंगाल को 3-0 से आगे कर दिया। मोहन बगान के लिए मनवीर सिंह ने 33वें मिनट में एकमात्र गोल दागा। हालांकि ईस्ट बंगाल ने जल्द ही वापस पलटवार किया और लाल रिंदिंगा ने अपना तीसरा और मैच का चौथा गोल करते हुए 44वें मिनट में अपनी हैट्रिक पूरी की और हाफ टाइम से पहले स्कोर 4-1 हो गया था। ईस्ट बंगाल ने दूसरे हाफ में आसानी से बढ़त बनाए रखी और शानदार जीत हासिल की। 22 साल के लंबे इंतजार के बाद ड्यूरेंट कप अपने नाम किया है ईस्ट बंगाल ने। और अब ईस्ट बंगाल की शानदार जीत पर कुछ और अपडेट के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: All the goals in the Durand Cup final today were scored in the first half. Edmond Lalindika scored a hat-trick for East Bengal.
4: Rashid with the ball in. Jay Gupta puts it back. Hat-trick

0: brutal, overwhelming, extraordinary, and magnificent performance from Edmund Lalwindikka.
1: While Bipin Singh added another goal, Manbir Singh scored the sole goal for Mohun Bagan. Edmund Lalwindikka of East Bengal was selected as the player of the tournament and won the golden ball. Aladdin Azerai of Northeast United FC won the golden boot for scoring the highest number of goals. Vishal Kait won the golden gloves for best goalkeeper of the tournament. Defence Minister Rajnath Singh witnessed the final match at the stadium and presented the trophy to the champions. Kollan Laha for Akashvani News, Kolkata.
2: तो जहां फुटबॉल के मैदान में एक शानदार रिकॉर्ड दर्ज किया गया, ऐसी ही उम्मीद आज भारतीय महिला हॉकी टीम को होगी कि किस तरह विश्व कप जो नीदरलैंड्स में खेला जा रहा है उसमें आज के अपने मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आगे का सफ़र तय किया जाए, जहां 10:30 बजे भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सामने होंगी और भारत को ये मैच हर हाल में जीतना है। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम को नीदरलैंड से हार का सामना करना पड़ा 1-3 गोल से और इसके साथ भारत की सेमीफाइनल में पहुँचने की संभावनाएँ काफ़ी हद तक सीमित हो गई हैं और दूसरी टीम के परिणामों पर निर्भर हो गई हैं। अब कार्यक्रम में बात की जाए क्रिकेट की, जहां कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने आज 5 विकेट पर 300 रन बना लिए थे। देवदत्त पडिक्कल ने फिर आज एक शानदार शतक लगाया और 117 रन की पारी खेली। कप्तान गिल ने 50 रन जबकि यशस्वी जायसवाल ने 45 रन बनाए। फिलहाल ध्रुव जुरेल 7 और सारांश जैन 4 रन बना करके क्रीज पर मौजूद हैं और पहले मैच की अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। क्या कुछ रहा आज के दिन में खास?
3: शक्ति, आज भारतीय बल्लेबाजों ने अपना दमखम दिखाया है श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने। अगर हम शुरुआत की बात करें तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी सधी हुई शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन 37 रन पर केएल राहुल आउट हो गए जब टीम का स्कोर 37 था। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल जब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया। वहीं 4th नंबर पर शुभमन गिल ने 50 रन बनाए और ऋषभ पंत 3 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए। उनकी बाई कलाई में दर्द के कारण वो अपना आगे का खेल जारी नहीं रख सके, एक शॉर्ट बॉल उनके कलाई में जाकर लग गई। वहीं रविंद्र जडेजा ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया जहां उन्होंने 83 गेंदों पर 43 रन बनाए। वो अपने अर्धशतक के करीब थे लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से असिता फर्नांडो की गेंद पर बोल्ड हो गए।
2: जी बिल्कुल, और शुभमन गिल और देवदत्त पडिक्कल लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए। क्या खास रिकॉर्ड्स इन खिलाड़ियों ने आज बनाए हैं?
3: अगर हम देवदत्त पडिक्कल की बात करें तो उन्होंने लगातार दूसरा शतक लगाया है इस मुकाबले में। इससे पहले भी उन्होंने एक शानदार शतक जमाया था और वो 6वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने श्रीलंका की धरती पर लगातार शतक जमाए हैं। अगर कप्तान शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने आज अर्धशतक लगाया और अपने 50 रन की बदौलत 1000 रन WTC की सिंगल साइकिल में पूरे करते हुए विराट कोहली के 932 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा उन्होंने 3000 रन भी पूरे कर लिए और वो 4थे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले।
2: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि भारत को सफ़ेद जर्सी में एक नई उम्मीदें दिखती हुई जिसकी भारतीय टीम को काफ़ी समय से दरकार है कि रेड बॉल क्रिकेट में कुछ और मजबूत परिपक्व खिलाड़ी टीम को देखने को मिले। और टेस्ट क्रिकेट की बात हुई है तो ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश श्रृंखला की बात की जाए, जहां ऑस्ट्रेलिया ने डार्विन में खेले गए क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में बांग्लादेश से मिली हार का बदला ले लिया है। आज साउथ मैके में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे ही दिन पारी और 51 रन से हरा दिया। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे और आज के हीरो विशेष क्या कहेंगे मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस पे और उससे पहले इस मैच पे, 2 दिन पे टेस्ट मैच समाप्त,
3: ये सबसे बहुत ही अलग बात रही जो टेस्ट मुकाबला इतनी जल्दी ख़त्म हुआ। मुकाबले में सिर्फ 750 गेंदें ही फेंकी गई और ये जो है 4था सबसे छोटा मुकाबला बना है टेस्ट क्रिकेट का। अगर हम बांग्लादेश की पहली पारी की बात करें तो 64 रन पर पारी उनकी सिमट गई थी। वहीं जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने के लिए आई तो उन्होंने 210 रन खड़े किए थे। वहीं बांग्लादेश जब दूसरी पारी में एक बार फिर बल्लेबाजी के लिए आया तो उन्होंने 95 रन बनाए। इसके साथ ही बांग्लादेश के साथ ये पहली बार ऐसा हुआ जब उन्होंने दोनों पारियों में 100 का आंकड़ा नहीं छू पाया है, तो ये बहुत ही निराशाजनक हार है बांग्लादेश के लिए जबकि उन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में एक शानदार जीत दर्ज करी थी। तो इस जीत के हीरो रहे हैं मिचेल स्टार्क जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो है परचम लहराया है। 10 विकेट हॉल उन्होंने लिया है इस मुकाबले में, पहली पारी में 6 विकेट और दूसरी पारी में 4 विकेट। मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी जो है वो 234 विकेट पर पहुंच गई है WTC की। इस साइकिल में उन्होंने पैट कमिंस का रिकॉर्ड जो है धराशायी कर दिया है।
2: जी बिल्कुल, तो रिकॉर्ड धराशायी किया है। भारत के लिए अगर देखा जाए, भारत की नज़रें लगातार WTC की अपनी रेस पर बनी हुई हैं। इस मैच के परिणाम ने क्या हद तक भारत को फ़ायदा देने का काम किया होगा?
3: बांग्लादेश

0: की जो WTC रैंकिंग है वो अभी भी चौथे नंबर पे वो बांग्लादेश की टीम बनी हुई है 55.5 अंकों के साथ, लेकिन अगर भारतीय टीम श्रीलंका के साथ ये जो मुकाबला खेल रही है अगर जीत जाती है तो वो चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगी और बांग्लादेश खसक कर पांचवें नंबर पर पहुंच जाएगी। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर बनी रहेगी 80% अंकों के साथ।
1: जी बिल्कुल, तो भारत को उम्मीद होगी कि श्रीलंका पर एक और शानदार जीत दर्ज की जाए और अपनी रैंकिंग में एक पायदान की छलांग और लगाई जाए। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। नई दिल्ली में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। ये प्रतियोगिता 17 अगस्त से इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई थी। आइए जानते हैं प्रतियोगिता में कौन कौन खिलाड़ी खिताब अपने नाम करने में सफल रहे।
2: विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स का खिताब फ्रांस के एलेक्स लेनियर और महिला सिंगल्स का खिताब दक्षिण कोरिया की अन से यंग ने अपने नाम किया। पुरुष वर्ग में एलेक्स ने फाइनल मुकाबले में जापान के कोदाई नाराओका को सीधे गेम में 21-11 से हराया। महिला सिंगल्स में अन से यंग ने जापान की अकाने यामागुची को 21-17 और 21-14 से हराया। डबल्स स्पर्धाओं में पुरुष डबल्स का खिताब चीन के लियांग वेई किंग और वांग चंग ने जीता। चीनी जोड़ी ने फाइनल में मलेशिया के अरोंचिया और सो वो यिक को 21-17 21-16 से पराजित किया। वहीं दक्षिण कोरिया की बे खाना और ली सा ही की जोड़ी महिला डबल्स की चैंपियन बनने में सफल रही। इस जोड़ी ने खिताबी मुकाबले में चीन की लियो शेंगशू और तांग निंग की जोड़ी को सीधे गेम में 21-15 21-15 से पराजित किया, जबकि फ्रांस की जोड़ी थॉम गिस्कल और डेल्फिन डेलरू ने इतिहास रचते हुए मिक्स्ड डबल्स का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में गिक्वेल डेलरू की जोड़ी चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी फेंग यांझे और हुआंग डोंगपिंग को 22-20 19-21 21-15 से शिकस्त देते हुए फ्रांस की ओर से मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीतने वाली पहली जोड़ी भी बनी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारत की मेजबानी को काफी हद तक विदेशी खिलाड़ियों ने सराहा है और भारत के लिए सबसे शानदार प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी ने किया, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में महिला डबल्स का कांस्य पदक अपने नाम किया। 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा के उस कांस्य पदक के बाद इस प्रतियोगिता में अब भारत को जाके ये पदक मिला है। सेमीफाइनल मुकाबले के बाद त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने कहा कि सच में पोडियम पे खड़ा होना उनके लिए एक कल्पना थी, और किस तरह उनका ये मैच गुजरा इस पर उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं।
3: सेकेंड सेट वो लोग काफी पेशेंटली खेले, तीसरे में बहुत अच्छा खेला। आज आई थिंक इवन इन द बैक कोर्ट शी वाज कंट्रोलिंग प्रीटी वेल, थोड़ा और अगर मैं सपोर्ट करती फ्रॉम द नेट आई थिंक वी कुड हैव पुल्ड ऑफ द सेकेंड सेट, बट आल्सो इन द थर्ड सेट थोड़े पॉइंट्स ऐसे थे जो हम कन्वर्ट कर सकते थे पर रिदम नहीं आया। आई थिंक प्लेइंग विद दिस चाइनीज पेयर्स आई फील लाइक वी वर बिट मोर कॉन्फिडेंट इन द फर्स्ट गेम, वी वर लीडिंग इन द फर्स्ट हाफ, देन दे कवर्ड इनटू 11-7, दे जस्ट टुक द ब्रेक एंड अगेन वी कवर्ड देम, we catch the scoring close to them. I think that time we were much more confident and we were trailing them. But in the second game, we didn't get the rhythm.
1: तो शानदार खेल दिखाया इस जोड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में, हालांकि सेमीफाइनल में इस जोड़ी को चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से 21-18 13-21 और 8-21 से हार का सामना करना पड़ा था। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की तमाम खबरों के साथ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें हमारी ईमेल sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ सम्पन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप

0: ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस के इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
4: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर

0: में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
1: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल, ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
2: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नृत्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
3: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को AI और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय

0: सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक M.L. जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ईस्ट बंगाल FC ने 135वां ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरंड कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Visakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Durand Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohan Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector and space research to build a global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a

अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध गायिका विदुषी प्रतिमा तिलक का हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन। विदुषी प्रतिमा तिलक का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, इसके बावजूद बचपन से ही आपकी संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि और प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। अपने माता पिता के पूर्ण सहयोग से आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा श्रीमती सुहासिनी एवं श्री प्रभाकर व्यास से प्राप्त की और इसके उपरांत डॉक्टर ज्योत्सना मोहिले से भी आपने मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपकी संगीत यात्रा को वास्तविक दिशा और मजबूत बुनियाद तब मिली जब जयपुर अतरौली घराने की दो वरिष्ठ गायिकाओं श्रीमती कमलाताई तांबे और श्रीमती कौशल्या मंजेश्वर ने लगभग दो दशकों तक आपको जयपुर अतरौली घराने की गायकी और बारीकियों का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन किया। आपने जयपुर गायकी के विद्वान पंडित अरुण द्रविड़ और प्रोफेसर मिलिंद मालशे से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपने दोनों गुरुओं से प्राप्त तालीम के आधार पर आपकी गायकी में खुली आवाज में किया गया आकार, लय के साथ कदम से कदम मिलाती हुई बोल, उपज तथा तानों में सुंदर गमक के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं और ये सब कुछ राग के

0: निर्धारित स्वरूप और उसकी मर्यादा के भीतर रहता है। जयपुर अतरौली घराने की महान गायन तपस्विनी श्रीमती मोगूबाई कुर्डीकर की गायकी को प्रस्तुत करने और उसका प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख गायिकाओं में आपका विशेष स्थान है। आपको अनेक प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपने आकाशवाणी की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया और वर्ष 1987 से आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए नियमित रूप से प्रस्तुति देती आ रही हैं। आप आकाशवाणी की उच्च श्रेणीय कलाकार हैं। आप ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। आपने देश भर में आयोजित अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आज की सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का शुभारंभ राग बिहागड़ा से कर रही हैं। विलंबित बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं प्यारी पग होले होले धरिए, और द्रुत तराना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री यति भागवत, हारमोनियम पर हैं श्री अनंत दोषी और सारंगी पर हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवार सरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट द वोकल रिसाइटल बाय रिनाउंड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट विदुषी प्रतिमा तिलक। बॉर्न इन नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड, विदुषी प्रतिमा तिलक शोड a natural flair for music since early childhood. With unequivocal support from her parents, she was initiated into the ocean of music by Mrs. Suhasini and Mr. Prabhakar Vyas and later by Dr. Jyotsna Mohile. Her musical journey took firm root when two senior vocalists of the Jaipur Atrauli Gharana, Shrimati Kamaltai Tambe and Shrimati Kaushalya Manjeshwar, trained and mentored her into the intricacies of the Jaipur Atrauli Gharana Gayaki over a period of two decades. She has also received guidance from Pandit Arun Dravid and Professor Milind Malshe, both scholars of Jaipur Gayaki. Based on the solid talim that she received from both her gurus, her Gayaki is embellished with open-throated akar, bol, upaj, going hand in hand with the lay and beautiful gamak patterns of taan, all within the framework of the raga. One of the leading vocalists to present and propagate the gayaki of the legendary Gaan Tapaswini, Srimati Mogubai Kurdikar of the Jaipur Atrauli Gharana, Vidushi Pratima Tilak aesthetically unfolds the raga to bring out its true essence. Vidushi Pratima Tilak is Akashwani top grade artist in Hindustani classical music. She is also an empaneled artist of the ICCR, Indian Council for Cultural Relations. Tonight, Vidushi Pratima Tilak begins her classical vocal recital with Raag Bihagda, Vilambit Bandish set to Tintal. Bol, Pyari Pag Hole Hole Thariye, Drut Tarana set to Tintal. Accompanying her on the tabla is Shri Yati Bhagwat, and on the harmonium is Shri Anant Joshi, and on sarangi, Ustad Farooq Latif Khan.

0: यह था राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का समापन राग सुहा से कर रही हैं। द्रुत बंदिश एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं प्रीत सो प्रीत चंदा, और द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, बोल है झूम झूम झूम बदरवा।
1: That was राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक concludes her vocal recital with राग सुहा। द्रुत बंदिश set to एकताल, बोल प्रीत सो प्रीत चंदा, also द्रुत बंदिश set to तीनताल, बोल झूम झूम झूम बदरवा।

0: ये था राग सुहा। तबला संगत श्री यति भागवत, हारमोनियम श्री अनंत जोशी और सारंगी पर थे उस्ताद फारूख लतीफ खान। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक का गायन अब संपन्न होता है। आकाशवाणी के मुंबई स्टूडियो में ध्वनि मुद्रित यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was Raag Suha and that concludes vocal recital Vidushi Pratima Tilak in tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. She was accompanied on tabla by Shri Yati Bhagwat and on harmonium by Shri Anant Joshi and Sar

अभी आप सुन रहे थे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। ये समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली

0: रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटोरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
2: अपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
1: Defense Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSE, and Yantra India Limited, worth approximately 34,000 crore rupees in Kolkata. The Defence Minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high-quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve this goal. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The BRICS Sport Ministers meeting concluded at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration reaffirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS Chairship 2026. A key outcome of the meeting has been the proposal to establish a BRICS working group on sports technology to promote cooperation in sports science, artificial intelligence, digital transformation and athlete performance. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar reached Moscow today on a 2-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and